हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हरि को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है, नोट किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0

जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना, आज बुधवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को बस एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है विपिन सच देवा की आवाज में, ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

आवाज़ में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मधुस्मिता की आवाज में ये सुंदर भजन प्रोग्राम में सुनते ही रहना। रेडियो SBS के जरिए जो पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए आज के प्रोग्राम में सुंदर सा माता जी का भजन भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी खास तौर पर कुमार सानू और अलका जी की आवाज में।

अभी सुनने वालों की सेवा में सुंदर सा माता जी का भजन कुमार सानू और अलका जी के आवास में बस पेश की गई। चलिए एक और सुंदर सा भजन मिलकर सुनते हैं आज की सुबह की प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में अबकी बार खास सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर शिव जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे अबकी बार प्रोग्राम में ये खास सुंदर और सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, ये सुंदर सा भजन होगा।

सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सेन रामबरन की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

जा रहा है, एक सुंदर सा माता जी का भजन पेश किया जा रहा है। और इस भजन के बाद आप सभी सुनवालों की सेवा में आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुनने वालों, चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। और आज के प्रोग्राम में एक सुंदर सा गणेश जी का आरती भजन बस पेश किया जाएगा। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गुलाम अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एड फिल्म बेवफा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की

रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

इसमें अभी आपने सुना खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दाह होरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूर आप उसी वेबसाइट पर जाइए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू।

और रेडियो SBS की सरिये ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार एक गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। उदित नारायण की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और देखा जाए अलका याग्निक भी होगा।

सात मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, 13 तारीख, मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को

सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। टून का यही मतलब होता है कि पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम यहां से पेश किया जाएगा। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम बहुत सी सुन वालों बस सुनते हैं घर पर मोटोकार में डीएबे प्लस रेडियो के जरिए इंटरनेट के जरिए मोटोकार में भी सुन वालों प्रोग्राम सुनते हैं और अपना काम पर जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी सुन वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम को बस फॉलो कर रहे हैं। एक सुन वालों बस रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और खबर किया है कि डीएबे प्लस रेडियो द्वारा अपना मोटोकार में प्रोग्राम को सुनते हैं और इस वक्त ट्रैफिक में है, फील्ड में है और मोटोकार में भी पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम सुनते हैं और वो भी गर्मा गर्म कॉफी के साथ। हाँ, ऐसा है कि सुन वालों मोटोकार में भी ट्रैफिक में भी हमारा ये पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम सुनते हैं, न सिर्फ हॉलैंड में लेकिन देश विदेश में बहुत से सुनने वालों होते हैं जो इस प्रोग्राम को भी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी सुनने वालों के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय पेश किया जा रहा है और खासतौर पर आपके लिए, आप जो हमेशा हमारा प्रोग्राम को इंतजार कर रहे हैं और हमेशा अपना रिएक्शंस भी देते रहते हैं, तो आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय। तो चलिए, प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, बस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। फिल्म स्कूल मास्टर तलत महमूद

गाना जो पेश की गई तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में लता और मोहम्मद रफी की आवाज में चले फिल्म भरोसा की ओर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गाना बस आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर के आवाज में।

फिल्म का नाम दहलीज, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालो रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी मोहम्मद रफी की आवाज में। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

मोहम्मद रफी और खासतौर आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना मोहम्मद रफी के आवाज में पेश किया जा रहा है। गाना होगा फिल्म का नाम दो दिल, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पद्मश्री मोहम्मद रफी की

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज।

पास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले आपके बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं पुरानी नगमे रेडियो SBS की जरिए जो पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। मोहम्मद रफी के बाद चले किशोर कुमार की ओर।

किशोर कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। असरों मीठे, ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की इस पुरानी नगमे की प्रोग्राम।

कैनबस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है कुछ ऐसे बंधन होते हैं।

देखिए आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ ऐसे बंधन होते हैं। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

0: दिल निकल पड़े।
1: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना प्रोग्राम में होगा मुकेश लता और मोहम्मद रफी की आवाज में। मुकेश लता एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए एक गाना लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये पुरानी फिल्म का गीत आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अपनी बार मोहम्मद रफी और लता जी

2020 में रिलीज किया गया है। उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में

मोहब्बत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। अभिजीत की आवाज में आज की प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

पॉसिबल किया बस में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-25-65-65-60 है। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए अजरों भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए पेश की गए कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। तो चलिए अब की बार फिल्म लावारिस की ओर, एक फिल्म जो नई हंती

द ग्रेट उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर से उदित नारायण।

अभी गीत और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में। फिल्म का नाम

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए अब की बार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज

फिल्म बाजी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0032 65 65 60। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में।

0: सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले आपके बार
1: हेलो हेलो
0: ये गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं होने वाले मियां के, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

इंदिरा गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई अर्ध फिल्म भूमि का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बार बार देखो, अरबान मलिक और निधि मोहन प्रोग्राम में। सौ आसमान गाना का बोल है आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में जुबिन एंड पलक के आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है, इश्क फॉरएवर फिल्म का नाम।

पलक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आतिफ असलम की आवाज में जो अब की बार पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो एसबीएस के जरिए ये जनाबस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज क्यों हमसे पर्दा है रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश।

हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए एक और खूबसूरत गाना मुकीस जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। इसी तार की नंबर पर अपना सभी और सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। उसी सुनने वालों है जो पुरानी नख़्मे इस वक्त सुनते हैं जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। चले गाना और किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार के आवाज में ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा करता हूं कि ये गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए हम आपकी बार ले चलते हैं फिल्म बारादरी की ओर। उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है बारादरी। बारादरी फिल्म का नाम। खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

रेडियो वेव्स भी एस की जरिए ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो एसबीएस की जरिए अभी आपने सुना। चले अब की बार ये गाना की ओर। ये गाना भी काफी पुरानी है जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश और गीत

की आवाज में ये गाना पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 24 पर तक रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 0325656560। चलिए अब की बार ये गाना की ओर है।

रेडियो स्टेशन के ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मन्ना डे और लता जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, एन फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर, एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्ड गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर, प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग।

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर द फिल्म लगान। एंड अर द फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्थ सॉन्ग दूर सोनू निगम एंड अलका याचनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इस सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

बिंदिया चमकी चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे, इस गजोंग दूर सोनू निगम एन एल के याचने के कौमत आयो द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gitong Kileher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसका सॉन्ग दो सलमा आका एंड बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietom Kelleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Jinni met Sunny komt Roeberoe.

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है।

मेरी तरफ से सुनने वालों एक शुभ रात्रि। हमारा साथ होगा 6 से 9 बजे तक और आप प्रोग्राम जरूर ही सुनते रहना।

6:05 5 मिनट गुजर गए हैं और यहाँ से हम आपको ले चलते हैं पहला गीत की तरफ और आपको सुनाएगी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और साथ दे रही है माइटी मुकेश।

द फेमस मूवी संगम द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और माइती मुकेश के आवास में ओ मेरे सनम शंकर जयकिशन ने म्यूजिक सजाए हैं इस फिल्म

आई जी मुकेश के वास में फिल्म का नाम है संगम। फिल्म हकीकत हकीकत हकीकत सॉरी सुनने वाला हकीकत से निकाला है ये इस फेमस सॉन्ग द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर।

47-48 से मिली हूँ और तब से मैं जानती हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो डुएट्स गाए थे वो अच्छे अच्छे डुएट्स थे। मेरे हिसाब से मन्ना दा ने हर तरह के गाने गाए हैं और वो बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो 100 साल जिए और ऐसे ही गाते रहें।

0: फिल्म सुहागन से निकाला है द नाइंथ गेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर।
1: खुद्दार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

0: याद में
1: आना गुजरा है,
0: दुनिया को भुलाए
1: ख्याल आए
0: हुए द मैन विद डायमंड वॉइस, मोहम्मद रफी के वास में। फिल्म का नाम है जहानारा, फिल्म प्रिंस 1964 का फिल्म है सुनने वालों।

0: Shava Amatwali Fiza, the man with the diamond voice, Mohammed Rafi. What's your film, Prince? तुमने किसी के जान को जाते हुए देखा है?
1: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो

0: मुझसे रूठ कर मेरी जान
1: द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी मेरी जान जा रही है फिल्म का नाम है राजकुमार। इस बार किशोर दा
2: हेलो गर्ल्स दिस इज खड़क सिंह गोरी गोरी बाकी छोरी आजा छोरी छोरी।

7:04 गुजर गए हैं सुनने वालों, ये है स्टूडियो टाइम। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS, मैं हूँ आपका सेविका अनिता। फिल्म चांद और सूरज, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। फ्रॉम द फेमस मूवी एक सवेरा एक लुटेरा, मशहूर फिल्म महल 1949 का फिल्म है सुनने वालों।

अरे हत, कमल बारोत और साथियों, शमशाद बेगम की आवाज में सुनने वालों, फिल्म लुटेरा, नीले आकाश

अपने डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी कभी ना कभी फिल्म शराबी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर

सुनो सजना द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर. फिल्म का नाम है आए दिन बहार के. फेमस मूवी दिल ने फिर याद किया है.

तू मेरी किरण, फेमस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल ने फिर याद किया, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और सादिया मोहम्मद रफी। फिल्म बदतमीज 1966 का फिल्म है।

0: दिल ने फिर याद किया। उमर वागिद हुसैन की आवाज में एल्बम का बोले मिशन टू लव। हाँ सुनने वाला आप सुन रहे रेडियो SBS और मैं हूँ आपका सेविका अनिता।
1: क्यों मोहब्बत के आसमां पे बादल छा गया, क्यों बिछड़ने का मौसम आ गया,

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही

जुबिन नौटियाल, फिल्म का नाम है रॉकी इश्यू। मर जावा एक बार फिर से, जुबिन नौटियाल के आवाज में।

0: फ्रॉम द मूवी मरजावा। और आपको सुनाए जुबीन नौटियाल।
1: तेरे बिन एक पल भी दिल नहीं मानता है, तेरा मेरा रिश्ता आज का नहीं बहुत पहले का है, दिल ये जानता है।

ये कुछ भी नहीं, जाने मन तुम हो कहाँ। सुन वालो, 9:05 बाकी है, इसका मतलब है ये आखिरी गीत है। इसी गीत के साथ हम आज्ञा और इजाजत मांगते हैं आपसे। आशा और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारा मुलाकात होगा बुधवार को 6 बजे, हम हाजिर रहेंगे।

आप सुन रहे हैं रेडियो SBS। मैं हूँ आपका सेविका नीता। और हाँ, मुस्कुराते रहना।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।